0: आगे अपने पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी मिलोगे पर नहीं, दो मिनट बाद की एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं।

0: भाई जब उजाता मत तमा
1: उत्ता जंतु
0: मगर की उल्टा चेन पूरा ही एक्सो एक्सो ताने बुझना की जो है
1: ओहो
0: लिया लिखे रे दिल दिया फील करें
1: एफएम 90.4